Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: पैसा खत्म पैसा हजाम।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो लिसनर, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस. Radio Olive, your happiness frequency. Geo

से मेरे बारे में वो सारे सच। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
4: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
4: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड, या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.

0: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: जबरदस्त अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And

0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन एएमटीसी सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक. सेव and win.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

0: की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
2: Hey, this is Ileana De Cruz.
3: This is me, Hrithik Roshan.
4: Hi, I'm Alia Bhatt.
5: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: दिस वीक ऑन एग्जीक्यूटिव लेंस, एग्जीक्यूटिव लेंस, ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
4: So, you know, we have a couple of catchphrases which we use, or we call them Snowden principles, right? For instance, one is about innovation. A couple of them say something along the lines of be curious, be creative. One which really ticks with me and really, which I really empathize with is it's all about people.
5: Okay.
4: So in the end, as much as the whole AI era is unfolding, organizations are becoming more corporate, more AI driven and machine driven, I still believe that people are the ones who are playing the key role over here. And when I say that Snowden and Doha in particular has made some very huge contribution towards making my life better, it's all about people. Executive.
3: Listen to the inspiring stories of the leaders shaping the bright future of Qatar. Only on Radio Olive, every Saturday, 8 a.m. till 10 a.m.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: ओसम

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchases.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: कभी प्रीति तो कभी डिंपल बन के बॉलीवुड को सिंप्लिसिटी की नई डेफिनेशन दी। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्रश कियारा आडवाणी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: ओसम

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑनर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: कभी प्रीति तो कभी डिंपल बनके बॉलीवुड को सिंप्लिसिटी की नई डेफिनेशन दी. बॉलीवुड की ऑल टाइम क्रश कियारा आडवाणी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेतु। डीजे सुकेतु, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम, जियो जियो बिंदास।
4: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhur.

देखिए व्हाट्सएप जो है वो बनाया गया था लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कब इसका परिवर्तन कर दिया गया लोगों को जो है गुड मॉर्निंग के फोटोज मैसेजेस भेज के इरिटेट करने में। हाँ जी वेलकम, कैसे हैं आप लोग, वीकेंड कैसा जा रहा है आपका। मैं हूँ आपकी कशिश, आपके लिए शो टेक टॉक लेकर आ गई, जो हमें टेक्नोलॉजी के हम बात कर रहे हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, टेक्नोलॉजी का जो है सही उपयोग करना यानी सही यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी का यूज आप कैसे करेंगे, जब आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। सो बस इस वीकेंड को थोड़ा टेक फ्रेंडली बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। बहुत सारी अलग अलग चीजों पर बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनको आप अपने दोस्तों के सामने बता बता के फ्लेक्स कर पाएंगे, एंड एड ऑन ऑरा पॉइंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं हूं आपकी कशिश, स्टे ट्यून, आपको यहीं पर रहना है टेक वाले शो पर, टेक टॉक पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आपके लिए चुन चुन के लाई हूं आपके वीकेंड को और ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on old gold exchange. And

कुछ दिन पहले अपने शो पर यानी लाइफ मस्त है पर बात कर रही थी कि यार जेंजीज जो है अब किसी भी चीज को रेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी चीज को खरीदना जो है वो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट की तरह नजर आती है। सो बस इसी पर मैंने जेंजीज और मिलेनियल्स के बीच में एक ओपिनियन का यू नो एक डिबेट शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार देखो आज के जमाने के हिसाब से तो रेंट लेना ही ज्यादा बढ़िया है। अब आप देखिए ये सोच रहे होंगे कि यार कशिश ये टिकटॉक वाले शो पर जो है तुम ये रेंट की बातें क्यों कर रहे हो। मैं बताती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम गहरा नाता हो गया है अब रेंट से टेक्नोलॉजी का। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए टिकटॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार आईफोन आपको रेंट पर मिल सकता है। एप्पल ने एक नया सिस्टम जो है वो शुरू किया है जहाँ पर आपको पूरे पैसे देकर आईफोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप हर महीने लगभग यू नो 1500 रुपीस यानी दैट्स 17.99 डॉलर जो है वो देकर रेंट कर सकते हैं अपना आईफोन और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखो यार जहां पर हम आईफोन की स्टोरेज जो है वो रेंट पर ले रहे थे अब आप पूरा का पूरा आईफोन रेंट पर ले सकते हो अपने हिसाब से लेटेस्ट वाला। तो देखिए आपको ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा जरूर 3311063 पर। फिलहाल मैं चलती हूँ, एक अमेजिंग वाला गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

भाई पता है बात जो है हाथ से तब निकल जाती है जब किसी चीज के इन्वेंट करने वाले को मेकर को ही ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये तो मैंने गलत चीज बना दी. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की लेकिन एक मस्ती के मजे के तड़के के साथ. अब देखिए यार ओपन एआई को तो आप सभी जानते हैं, हम सब आजकल एआई को कितना ज्यादा यूज करने लग गए हैं लेकिन ओवर स्मार्ट होता जा रहा है एआई. ओपन एआई के जो बॉस हैं उनका ये दावा है कि एआई अब इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा जो है वो स्मार्ट हो सकता है. उसके बराबर तो वो ऑलरेडी काम कर ही रहा है लेकिन आगे भी निकल सकता है. लेकिन एक डर यह है कि उनका एक एआई जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से दूसरी कंपनीज को हैक करने की कोशिश कर रहा है जो आने वाले समय में ना साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है. तो बस इसी से बचने के लिए वो जितने भी इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो अपना रहे हैं. बाकी एक जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो मैंने अपने जेमिनी में देखी वो मैं आपको थोड़ी सी देर में आके बताऊंगी लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करो और स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ. कहते रहो जियो बिंदास.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh. Fresh song of the hour. Ye.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

तो मैं ना आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस AI के साथ बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से AI को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो कुछ गलत जो है ना क्रिएट कर सके. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसूर. शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं टेक टॉक, जहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ. अब देखिए यार, AI के अनसेफ होने का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं कि यार किस तरीके से इसका मिसयूज किया जा सकता है. लेकिन मैंने जब कोशिश करी कि यार एक काम करते हैं कि मैं अपनी फोटो के साथ कुछ छेड़छाड़ करती हूँ, तो AI ने साफ साफ कह दिया कि यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा. अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. तो मेरी एक मिरर सेल्फी थी जो मैंने ऑफिस के लिफ्ट में ली थी, एंड मुझे अभी क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, स्पाइडरमैन जो है वो रिलीज हुई है, सो मुझे जो है स्पाइडरमैन देखने जाने से पहले एक टी शर्ट चाहिए थी जिसपे स्पाइडरमैन का कुछ बना हो. तो मैंने क्या किया, उस मिरर सेल्फी को अपलोड किया अपने जेमिनी पे, एंड वहां पर जाकर मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि चेंज दिस आउटफिट टू अ स्पाइडरमैन टी शर्ट आउटफिट, एंड उसने बना दिया. लेकिन अब क्या हुआ ना कि मुझे उस टी शर्ट में, मतलब मैं वैसे तो बॉडी पॉजिटिविटी के लिए बहुत बातें करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि यार ये टी शर्ट मेरी बॉडी पर उतनी फ्लैटर ही नहीं लग रही है. तो मैंने बस ये कमांड लिख दिया कि यार एक काम करो कि मुझे इसमें थोड़ा सा पतला बना दो. जेमिनी ने साफ साफ एक नोटिफिकेशन दे दिया, उसने लिख के दे दिया कि देखिए मैं बॉडी पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, आप जितने अप्रोप्रिएट आउटफिट मुझे बनाने के लिए बोलेंगे मैं उतने बना सकता हूँ, लेकिन किसी के फोटो पर कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है वो मैं नहीं करूँगा, ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है. वाओ यार, आज जहां पर इंसानों से एथिक्स की उम्मीद नहीं की जा सकती, वहां पे AI के तरफ से ये मैसेज आना एक बहुत बड़ी चीज है. वैसे लिखो यूज जो है वो हमें करना आना चाहिए, हमारे जितने भी ऐसे टूल्स हैं उन्हें मिसयूज करने वाले भी ना लाइफ में कम नहीं है. सो AI आई होप सारे सही हाथों में रहे, एंड लोगों को भी एथिक्स की जो है थोड़ी सी नॉलेज हो. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

देखिए पहले ना बाकी सारी चीजें महंगी हो रही थी, हमें समझ आ रहा था रोबोट्स क्यों महंगे कर दिए, अब मेरी आलस का क्या होगा। एंड जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं टेक टॉक, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। मैं लिटरली पता है मैं शो का नाम ना लाइफ मस्त है बोलने वाली थी। सो अगर आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो इतना मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हर रोज लाइफ मस्त है शो आपके लिए मैं लेकर आती हूँ 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। सो वीकेंड्स पर टेक टॉक वाले शो में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन लाइफ मस्त है में लाइफ की बात करते हैं। सो लाइफ मस्त है पे ट्यून इन मुझे कर लेना, लेकिन फिलहाल मैं बात करना चाहती हूँ कि जो रोबोट्स है वो महंगे होने वाले। सो काफी सारे देशों ने जो है वो फॉरेन के स्पेशली चाइना से आने वाले जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं उन पर रोक लगा दी है एंड या फिर बहुत चेकिंग वाला जो सिस्टम है वो लगा दिया है। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि अब आने वाले टाइम पे घर में और फैक्ट्री के कामों में जो रोबोट्स यूज हुआ करते थे उनके प्राइसेस काफी बढ़ सकते हैं। सो अगर आप सोच रहे थे कि यार एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है मैं ले लूं सफाई के लिए, तो अब नहीं हो पाएगा। वैसे तो कोई नहीं सोच रहा था, ये छोटे भाई बहनों से करा लेते हैं हमारे यहाँ तो ये वाला काम रोबोट की क्या जरूरत है। मैं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
2: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And

देखिए यार, मैं ना इस बात को सोच के बिल्कुल आश्चर्यचकित, यानी यू नो फ्लैबरगास्टेड नहीं हुई थी कि यार अब जेंजीज एकदम जो पुरानी चीजें थी उनके पास वापस लौट कर जा रहे हैं. स्पेशली अगर हम बात करें म्यूजिक सुनने वाले डिवाइसेस की, रेडियो सुनने वाले डिवाइसेस की, या फिर अलार्म क्लॉक की. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने. जेंजीज जो है वो अब मैकेनिकल अलार्म क्लॉक की तरफ वापस जा रहे हैं अपने फोन को बिल्कुल सबसाइड करके. मैं हूँ आपकी कसूस, टेक टॉक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मस्ती और मजे के तड़के के साथ. तो देखिए, अब थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं. दुनिया की पहली मैकेनिकल अलार्म क्लॉक जो है वो 1787 में जो है बनाई गई थी, और उसमें अपने आप अलार्म का टाइम जो है वो बदल नहीं सकते थे. मतलब आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती थी टाइम जो है वो सेट करने में. एंड मुझे लगता है कि यार बात तो सही है. जैसे अभी हम करते हैं ना कि 7 बजे का अलार्म लगाया, 7:10 का 15 का ऐसे लगा दिया और फिर स्नूज भी कर दिया. कितनी सारी फैसिलिटीज हो गई हैं हमारे पास अपनी आलस को आगे बढ़ाने की. पहले वाले में लगाने में, अलार्म लगाने में मेहनत करो, उसको बंद करने में मेहनत करो, आराम से नींद खुली जाएगी. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून रही और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेलवलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेलवलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वेलवलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वेलवलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आजकल लोग फोन जो है वो उसे फोन की तरह यूज करने के लिए नहीं कैमरे की तरह यूज करने के लिए खरीदते हैं। और मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की बात भी कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अगर कोई फोन जो है खरीदने के लिए जाती हूँ, सबसे पहले मेरे अब ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है उसके कैमरे पे चला जाता है, मैं ऑटोमेटिकली कैमरा खोल के अपनी शक्ल देखने लग जाती हूँ। लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑल ऑफ़ मैं हूँ आपकी कसस, जो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा जो है वो किसी कंपनी ने नहीं बल्कि कोडैक ने बनाया था। यानी किसी फोन कंपनी ने नहीं बनाया था पहला डिजिटल कैमरा, 1975 में जो है कोडैक ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। लेकिन कोडैक फिल्म रोल बेचकर जो है इतने पैसे कमा रहा था कि उन्होंने डिजिटल कैमरे को दुनिया से छुपा दिया ताकि वो फिल्म जो है वो बिजनेस ठप ना हो जाए। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी, भले ही टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए ये लोग, लेकिन उससे ज्यादा आगे जो है ये निकल गए बिजनेस स्ट्रेटजी में। मैं हूँ आपकी कशिश, अमेजिंग वाले गाने आप इंजॉय करते रहिए, ऐसे बहुत सारे फैक्ट जो है आपको टेक टॉक वाले शो पे सुनने को मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कभी प्रीति तो कभी डिंपल बनके बॉलीवुड को सिंप्लिसिटी की नई डेफिनेशन दी। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्रश कियारा आडवाणी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

टेक्नोलॉजी की बात करते करते एक दिन जो है मैं भी रोबोट बन जाऊंगी, ऐसा लग रहा है मुझे. And जी, welcome back. 106.3 Radio Olive Pair. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ. अब देखिए यार, मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है क्योंकि आपने अपना वीकेंड मनाना शुरू कर दिया है, मेरा भी तो मनेगा ना. सो बस अब मैं यहाँ से चलती हूँ, थोड़ी सी देर में मुस्कान आ जाएगी, बड़ी सी मुस्कान लेके आपकी वीकेंड को हैप्पी वीकेंड बनाने के लिए. तो चलिए आप जल्दी से अपना इंस्टाग्राम खोलिए और उस पर रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर फॉलो कर लीजिए. वहां पर आरजे कशिश के नाम से मैं भी आपको मिल जाऊंगी. तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ फॉलो करो ना. बाकी जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना एंड मुझे याद करते रहना. बाकी कल आऊंगी लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर सुबह 10 बजे, सेम टाइम सेम प्लेस. एक्चुअली टाइम 10 बजे हो गए, सेम टाइम नहीं है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

Hi, good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Happy Weekends aur aaj hai Friday. So, I was thinking, ek pyar sa, matlab, alag feel hota hai jab Thursday evening aati hai. So, main hu Muskan aur agle 3 ghante hum gaane hi nahi, weekend ki vibe bhi share karne wale hain. Waise mujhe ek baat hamesha interesting lagti hai, ki hum Sunday se leke Thursday tak clock dekhte rehte hain. Kitne baje chutti hogi, weekend aate ही क्लॉक देखना तो भूल सा जाते हैं. शायद इसी का नाम फ्रीडम होता है. यू नो, वीकेंड का मतलब ना सिर्फ लेट उठना नहीं होता. कभी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट, कभी दोस्तों के साथ कॉफ़ी, कभी एक अच्छी सी मूवी, और कभी सिर्फ खुद के साथ टाइम बिताना, और कभी कभी सिर्फ अपने घर को अगले पूरे हफ्ते के लिए सेट करना. ये सब चीज़ें होती हैं. और ऑनेस्टली आजकल सबसे महंगी चीज़ पता है क्या हो गई है? वो टाइम. इसीलिए वीकेंड अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिएगा. आज के शो में हम बात करने वाले हैं कतर के कुछ अमेजिंग वीकेंड एक्सपीरियंसेस की, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, कुछ फन स्टोरीज की, और बीच बीच में आपके फेवरेट गाने भी. सो व्हाट्सएप इज सेम 3311063. तो आप बताइए आपके वीकेंड की पहली डेस्टिनेशन क्या होती है? बेड, ब्रंच, मॉल या फिर कोई बीच? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
3: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
5: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूना हाइपरमार्केट में।
6: लूना, where the world comes to shop.

कि समर का एक रूल है, बाहर जाते ही पहला थॉट आता है कि बस जल्दी से एसी तक पहुंच जाऊं। लेकिन इसी वेदर में कतर को एक और चीज में एक्सपर्ट बना दिया गया है, दैट इज इंडोर एक्सपेरिमेंट। सोचिए एक ही सिटी में आप वीआर गेम्स खेल सकते हो, बोलिंग कर सकते हो, अलग अलग गेम्स इंजॉय कर सकते हो, इंडोर थीम पार्क एक्सप्लोर कर सकते हो, और बच्चे तो बच्चे बड़े भी इक्वली इंजॉय करते हैं। और इस वीकेंड अगर घर पर आप बोर हो रहे हो और आपको लग रहा है कि यार क्या करें, बस ड्राइव पे निकल जाते हैं, सो अर्बन अरेना, मेगापोलिस, दोहा क्वेस्ट, एंग्री बर्ड वर्ल्ड, या फिर ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक फन फैक्ट बताती हूँ, रिसर्च कहती है कि जब हम गेम्स खेलते हैं, चाहे बच्चे हों या अडल्ट हों, बॉडी में डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, और डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। मतलब थोड़ा सा गेम और मूड जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। सो अगर आपको पूरा दिन किसी एक इंडोर एंटरटेनमेंट जोन में स्पेंड करना हो तो सबसे पहले आप किस जगह जाओगे, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाओगे, ये भी बताना। 3311063 इज माय नंबर। अगला बताती हूँ कि भैया आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। बाय द वे इस इतने हाई टेम्परेचर में भी यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप आराम से जाके अपना वीकेंड एक्सप्लोर कर सकते हो। पर आप मुझे बताओ कि आप मॉल के अलावा कहीं और जाने का प्लान कर रहे हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

कभी रंगों के अंदर चलकर देखा है आपने? हम बचपन से कलर्स देखते आए हैं, लेकिन क्या कभी कलर्स को फील भी किया है? कटारा में एक्सपीरियंस चल रहा है कलर वॉर्स का, और नाम ही सब कुछ कह देता है यार। जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर एंटर कर गए हो, ऐसा फील होगा। हर रूम, हर वॉल, हर लाइट एक अलग फीलिंग क्रिएट कर रही है वहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं, हर कलर हमारे मूड को थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता है। ब्लू हमें काम फील करवाता है, येलो पॉजिटिविटी का कलर माना जाता है, और ग्रीन नेचुरली रिलैक्सिंग कलर होता है। इसीलिए कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कलर्स जो है वो धीरे से हमारा मूड जो है वो चेंज कर देते हैं। वीकेंड के लिए अगर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो कलर वर्ड्स डेफिनेटली लिस्ट में होना चाहिए। और अभी कल तो सैटरडे है, आपके पास कल का टाइम है, या कल हाफ डे है, या फिर कल आपका पूरा का पूरा ऑफ है, तो भी आप प्लान कर सकते हो। और आप मुझे बताओ, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को सिर्फ एक कलर से डिस्क्राइब करना हो तो वो कलर कौन सा होगा और क्यों? ये जवाब सुनना इंटरेस्टिंग लगेगा वैसे मुझे। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

यार देखो घर में बैठ के ओटीटी पर मूवी देखना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सिनेमा का ना एक अलग ही फीलिंग है। एक जमाना था जब मूवी देखने का मतलब होता था टिकट्स बुक करो, पॉपकॉर्न लो और लाइट्स ऑफ होते ही एक अलग एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी। आज ओटीटी ने लाइफ को ईजी बना दिया है, पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिनेमा हॉल की फीलिंग रिप्लेस नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि सिनेमा सिर्फ मूवी नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है। पहली विश लिस्ट, इंटरवल की कॉफी और फिर मुझे लगता है कि वो जो वहाँ पे सीटियाँ बजती थी ना पहले थिएटर्स में, उनकी अलग ही फीलिंग थी। और एंड में पूरा हॉल एक साथ तालियां बजाता हुआ, उस फीलिंग का ना कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस वीकेंड अगर मूवी प्लान है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और लास्ट वीकेंड भी मैं मूवी देखने गई थी और इस वीकेंड देखो स्पाइडरमैन आई है, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट। और एक और फन फैक्ट बताती हूँ, स्टडीज कहती हैं कि जब हम किसी इमोशनल सीन को दूसरे लोगों के साथ देखते हैं तो हम उस इमोशन को और डीपली फील करते हैं। शायद इसीलिए कॉमेडी हॉल में ज़्यादा फनी लगती है और इमोशनल सीन्स जो हैं वो और ज़्यादा इमोशनल लगते हैं। So I have a question for you कि मूवी देखते वक्त सबसे जरूरी आपको क्या लगता है, पॉपकॉर्न या फिर कोई और कॉफी या फिर समथिंग एल्स, या वो दोस्त जो पूरी मूवी में आपको कमेंट्री करता रहता है कि यार अब ये होगा अब ये होगा, और मुझे वो दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है जो मूवी के टाइम पे बीच बीच में बातें करते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और आज फ्राइडे को थोड़ा सा स्पेशल बना रहे हैं। नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सिर्फ 30 मिनट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक डॉक्टर ने एक बार बहुत खूबसूरत बात कही थी, एक्सपीरियंस इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर व्हाट यू एट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट योर बॉडी कैन डू। और ऑनेस्टली हम सब फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, या नेक्स्ट मंथ से करेंगे, या न्यू ईयर से करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी हेल्थ, हार्ट और मूड, सब कुछ, और इवन स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है। और कतर की एक ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि यहाँ वेदर को प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज समझा गया है। इसीलिए यहाँ पे इतने सारे AC वॉकिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक है अलगराफा पार्क, और ऐसे बहुत सारे पार्क्स हैं आपके आसपास, जो भी आपको नियर बाय लगता है आप वहाँ पर जा सकते हो। मतलब बाहर गर्मी हो या ह्यूमिडिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी वॉक मिस करने का एक्सक्यूज नहीं बना सकते। और वैसे भी कभी कभी लाइफ का बेस्ट आइडिया जिम नहीं होता, वॉकिंग का मजा लेना, उसके साथ वक्त स्पेंड करना, और यू नो फोन पे बात करते करते वॉक करना। तो इस वीकेंड ना चैलेंज बहुत सिंपल है, फोन पॉकेट में रखिए, हेडफोन्स लगाइए और 30 मिनट सिर्फ अपने साथ टाइम बिताइए। और आप मॉर्निंग वॉक ज्यादा पसंद करते हो या इवनिंग वॉक? बाय द वे, आई पर्सनली लाइक इवनिंग वॉक। मुझे लगता है कि ये जो इवनिंग वॉकर्स होते हैं ना, दे आर वेरी फ्री, मतलब इनके पास अब दिन भर की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये ऑलरेडी फाइट कर चुके होते हैं। तो अब इनका दिमाग होता है एकदम ठंडा, और मॉर्निंग में ना बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है। तो बाय द वे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

भाई बाहर तो इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी है और अंदर विंटर वंडरलैंड आप बना सकते हो अगर आप चाहो तो। कोई आपसे कहे कि यार चलो जुलाई में आइस स्केटिंग करते हैं तो आपको लगेगा कि शायद मतलब पहला सवाल यही होगा आपका कि कौन सी कंट्री जाना पड़ेगा, लेकिन जवाब यही है कि कतर में ये पॉसिबल है। सो यहाँ इस कंट्री में यानी कि कतर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक तरफ आपको रेगिस्तान मिल जाएंगे और दूसरी तरफ विलाजियो मॉल के अंदर एक पूरी आइस रिंक, मतलब बाहर की गर्मी और अंदर की ठंडी हवा, बिल्कुल दो अलग सीजन एक ही दिन में। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, आइस स्केटिंग ना सिर्फ फन एक्टिविटी नहीं है, ये लोग बोलते हैं मतलब एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मसल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर आपको लगता है कि यार वीकेंड पे तो कुछ हो नहीं पाता, देन यू कैन गो टू विलाजियो मॉल। हर बिगनर की पहली स्केटिंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 2 मिनट कॉन्फिडेंस और 3 मिनट धड़ाम, लेकिन वही गिरना बाद में फेवरेट मेमोरी बन जाता है। सो अगर इस वीकेंड कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, विलाजियो आइस एरेना एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सो यू टेल मी कि आप स्केटिंग में चैंपियन हैं या वॉल पकड़ के पूरा राउंड कंप्लीट करना आपने बचपन में स्टार्ट किया था। बाय द वे अगर मैं अपनी स्केटिंग की बात करूं तो जब मैं छोटी थी तब मैं बेटर फील करती थी, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती थी, जैसे जैसे बड़ी हो गई वैसे वैसे स्केटिंग ऐसा लगा कि आ ही नहीं रही है। बाय द वे मैंने अभी तक ये विलाजियो में आइस स्केटिंग ट्राई नहीं किया है, आई विल गो एंड ट्राई, लेकिन आपने अगर ट्राई नहीं किया है तो आप भी अपना रास्ता बदल के अभी इसी वक्त विलाजियो की तरफ जा सकते हो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: को थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका मूड खराब है तो वो कितनी देर तक खराब रहता है? आज एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपका पूरा वीकेंड चेंज कर दे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब कोई बुरी बात होती है, जैसे किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, कॉफी गिर गई, ट्रैफिक मिल गया या फेवरेट प्लान कैंसिल हो गया, तो हमारा ना ब्रेन में पहला इमोशन रिएक्शन आता है, वो सिर्फ 90 सेकंड तक ही रहता है। उसके बाद हम खुद से बात कर करके बार बार सोच कर अपना मूड खुद खराब करते हैं। मतलब प्रॉब्लम से ज्यादा उसके बारे में सोचना हमें थका देता है। सोचो एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है। अब वीकेंड इसीलिए होता है रीसेट बटन दबाने के लिए, राइट? छोटी बातों को छोटा ही रहने दीजिए और जो अच्छा है उसे थोड़ा और बड़ा बना दीजिए। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपका मूड जो है वो एकदम से कौन ठीक कर देता है? मतलब एक कप चाय, फेवरेट गाना या फिर किसी अपने का एक फोन कॉल? और आई विल से कि यार ऐसे दिन भर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका मूड खराब करती है, लेकिन वो मूड सिर्फ 90 सेकंड तक ही खराब रहने दीजिए और उसके बाद खुद से बातें करके ना खुद को पॉजिटिव करना, ये भी तो हमारा अपना एक काम है ना। सो ये करिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार इस फ्राइडे तो ये प्लान बनाया था, इस दोस्त ने धोखा दे दिया और हम तो डिनर पर जाने वाले थे, तो आप मतलब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि उसके पास कोई और काम आ गया हो, उसे जाने दीजिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063 और बताइए मुझे कि आपके लिए आपका फेवरेट यू नो मूड लिफ्टर क्या है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर, ये है हैप्पी वीकेंड्स, जियो बिंदास।
1: कभी प्रीति तो कभी डिंपल बन के बॉलीवुड को सिंप्लिसिटी की नई डेफिनेशन दी। बॉलीवुड की ऑल टाइम क्रश कियारा आडवाणी को रेडियो ऑलिव की तरफ से हैप्पी बर्थडे।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनू हाइपरमार्केट में।
2: लुनू, where the world comes to shop.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है. रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूना हाइपरमार्केट में.
2: लूना, where the world comes to shop.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: कहते हैं दिल का रास्ता ना पेट से ही जाता है। एक ट्रैवलर ने किसी से पूछा कि तुम किसी नई कंट्री में सबसे पहले क्या देखते हो। उसने कहा कि म्यूजियम, बाद में पहले लोकल फूड। और बात में दम भी था, क्योंकि किसी भी देश का असली कहानी जो है वो उसके खाने में छुपी होती है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। और इसीलिए कतर इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल हर साल इतना स्पेशल होता है। अगले साल जनवरी में लुसेल स्टेडियम में एक बार फिर से दुनिया भर के फ्लेवर्स से भरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट फूड होगा, फाइन डाइनिंग होगा, लाइव कुकिंग होगी और एक ही जगह पर अलग अलग कल्चर का टेस्ट होगा। सो मैं पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट जो ये फूड फेस्टिवल है ये अटेंड कर रही हूँ और हर बार मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि टेस्ट और स्मेल डायरेक्टली ना हमारी मेमोरी से कनेक्टेड हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी एक सिंपल सी मतलब चाय भी, बिरयानी भी, मतलब उसकी खुशबू जो है वो सालों पुरानी यादों में चली जाती है। सो आई विल से कि इस वीकेंड का फन क्वेश्चन भी यही है कि अगर पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही खाना आपको खाने के लिए मिले तो आप कौन सा खाओगे, इंडियन, अरबिक, इटालियन, चाइनीज या मैक्सिकन। सो क्या चूज करोगे आप? नंबर 3311063। रीजन भी बताना, क्योंकि फूडी डिबेट्स ना हमेशा इंटरेस्टिंग ही होती है। बाय द वे, अगर मेरी बात अगर की जाए तो मुझे ना बहुत सिंपल खाना पसंद है, मतलब वन पॉट मील जिसे कहते हैं, चाहे वो खिचड़ी हो गई, चाहे वो मैगी हो गई, मुझे ऐसे ना सिंपल सिंपल चीजें बहुत पसंद है। आप बताइए आपको क्या खाना पसंद है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: यार वीकेंड और मूवी, मतलब ओटीटी मूवीज का जो कनेक्शन है वो एकदम चाय और बिस्किट जैसा है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस हैप्पी वीकेंड्स. एक तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि यार आपने कुछ देखा नहीं सुबह से. लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि हम मूवी चूज करने में ही आधा घंटा निकाल देते हैं? मतलब इवन रिसर्च कहती है कि हम 20 से 22 मिनट सिर्फ यही देखते रहते हैं कि कौन सी मूवी देखें या फिर रेटिंग क्या है, या हम ये देखते हैं कि अरे ये तो पहले देख ली थी और फिर 45 मिनट स्क्रॉल करके फ़ोन जो है वो साइड में रख देते हैं और बिना कुछ देखे. तो इस वीकेंड एक फॉर्मूला ट्राई करो, मूड के हिसाब से मूवी चूज करो. अगर दिल हल्का करना है तो कॉमेडी ले लो, अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो थ्रिलर ले लो, और अगर फैमिली के साथ बैठना है तो फील गुड ड्रामा इंटरेस्टिंग लगता है. सो फैक्ट बताती हूँ. साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम अच्छी स्टोरीज देखते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ एंटरटेन नहीं होता, एम्पैथी भी डेवलप करता है. मतलब एक अच्छी फिल्म हमें दूसरे की यू नो फीलिंग समझाने में मदद करती है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप मूवी चूज करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? एक्टर, स्टोरी, या फिर IMDB पर रेटिंग देखते हो, या फिर लोगों के रिव्यूज पढ़ते हो? भाई मैं तो अगर अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले बस ये देखती हूँ कि स्टोरी क्या है. अगर मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, मूवी स्टार्ट करने के बाद मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं पूरी मूवी खत्म करती हूँ. और एक बार मैंने मूवी स्टार्ट कर दी तो आई विल ट्राई कि यार मैं देखती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यू नो स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर मुझे लगता है यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, इसीलिए मैं गिव अप नहीं करती. आप मुझे बताइए कि आप मूवी कैसे सेलेक्ट करते हैं. बाय द वे OTT पर 3311106 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: सो वीकेंड की सबसे खूबसूरत खुशबू अगर मैं बात करूं क्या है, तो वो एक चीज है, वीकेंड की सबसे पहली खुशबू क्या होती है मेरे लिए, किचन से आती हुई चाय की खुशबू। थर्सडे को जब आपकी छुट्टी हो जाती है, आप ऑफिस से घर जाते हो, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो घर जाते ही उनको लगता है कि यार बस यहीं पे दोस्तों को बुला लो और आज थोड़ा लेट तक बाहर रहेंगे, तो वो जो कड़क की खुशबू होती है वो एक बढ़िया है। दूसरा ये कि अगला दिन जब आप उठते हो तो आपको उठने की जल्दी नहीं होती, और वो जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत बढ़िया लगता है। सो बेसिकली ऐसा होता है कि जो वीकडेज है इसमें सब कुछ ना बहुत जल्दी जल्दी होता है, एक टोस्ट बनाया, कॉफ़ी बनाई और ऑफिस भागते हुए पहुंच गए। लेकिन वीकेंड ब्रेकफास्ट जो है उसकी बात ही अलग होती है। मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं कतर में, इवन कई सारे अपने दोस्तों को देखा है जो कैब बुक करते करते अपनी चाय कॉफ़ी जो है वो अपने सिपर में भरते हैं और उसके बाद आराम से कैब में बैठ के अपना कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी, ऐसा लगता है कि पी नहीं है यार, कोई अच्छी अच्छी गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला दो। सो उसके बाद मुझे लगता है कि वीकेंड इज़ लाइक यार आज बनाते हैं आलू के पराठे, कहीं पर पोहा, कहीं पर इडली सांभर, तो कहीं पर छोले भटूरे, ये सब वीकेंड पर ही हो पाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वीकेंड जो है वो ब्रेकफास्ट में कैलोरीज नहीं कॉन्वर्सेशन भी काउंट होती है। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि रिसर्चर्स कहते हैं कि फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट सिर्फ मील नहीं होता, एक याद बन जाती है, एक सवाल बन जाता है। सो आई विल से कि आपके घर का ऑफिशियल वीकेंड ब्रेकफास्ट क्या होता है। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो भाई पराठे, मतलब ऐसा होता था कि वीकेंड मतलब पराठे, उससे बेटर कोई है ही नहीं, ना कोई रेस्टोरेंट ना कोई जगह। आप मुझे बताइए वीकेंड आपके लिए क्या लेकर आता है खास। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063 और ये है हैप्पी वीकेंड्स।
1: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूना हाइपरमार्केट में।
3: लूना, where the world comes to shop.

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा

0: अच्छा एक बात बताओ, क्या खुशी खरीदी जा सकती है? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक कूपन दे रही हूं, या जिससे आप कहीं पे जाकर शॉपिंग कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? शॉपिंग करोगे, फैमिली के साथ आउटिंग करोगे? सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्वर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ जो है वो ये कहती हैं कि हम जनरली एक्सपीरियंस पर खर्चा किए हुए पैसों को ना ज़्यादा देर तक याद रखते हैं कंपेयर टू थिंग्स। मतलब आपने एक नई टी शर्ट खरीदी, आप बहुत जल्दी उसे भूल जाओगे। दो बार पहन के, एक बार पहन के, लोगों की तारीफ सुन के आप भूल जाओगे। शायद कुछ महीने बाद वो पुरानी लगने लगेगी, लेकिन एक फैमिली डिनर या फिर कोई रोड ट्रिप या फिर एक कॉन्सर्ट जो होगा ना, ये एक छोटी सी आउटिंग भी अगर आप करते हो ना, तो वो सालों तक आपको याद रहती है। शायद इसीलिए वीकेंड जो है वो शॉपिंग से ज़्यादा वीकेंड मेमोरीज बनाने के लिए होता है। सो आई विल से कि अगर आपको मैं कहूँ कि या यू हैव दिस पर्टिकुलर अमाउंट और आपके पास इतने कतरे रियाल हैं टू सिर्फ यू नो एक्सपीरियंस पर स्पेंड करने के लिए, तो आप क्या चूज करोगे? कोई डिनर, कोई एडवेंचर, कोई मूवी या फिर कोई छोटा सा स्टेकेशन? बताओ मुझे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM और ये है हैप्पी वीकेंड्स और नंबर है 3311063।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
3: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सो वीकेंड को जल्दी मत गुजरने दीजिए. अब देखिए फ्राइडे ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है और दोस्तों देखते ही देखते आज हैप्पी वीकेंड भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया है. जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे करूंगी. हम अक्सर कहते हैं कि वीकेंड ना कितनी जल्दी खत्म हो गया, लेकिन शायद वीकेंड जल्दी नहीं गुजरता, हम उसे जल्दी जी लेते हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो वाले 106.3 FM और ये है हैप्पी वीकेंड्स. इस बार एक काम करिए, जब आप कोई कड़क चाय पीने जाएं तो फोन साइड में रख दीजिएगा, जब फैमिली के साथ बैठें तो नोटिफिकेशंस को म्यूट पर डाल दीजिएगा, जब सनसेट देखें तो उसकी फोटो से पहले उसे अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि कुछ मोमेंट्स गैलरी में नहीं दिल में ज्यादा अच्छे लगते हैं. और अभी के लिए आई विल से कि मैं मुस्कान, मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि भाई अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और मिलेंगे कल यू नो विद द मिडनाइट लाउंज. आज का सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने बहुत सारी बातें की, आई हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू टॉक, लेकिन आज नहीं कल. मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि वीकेंड का असली जो लग्जरी टाइम है जो यू नो आपके और मेरे पास है, वो जिस इंसान के साथ आप हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सभी के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए और अच्छी जगह पर जाकर डिनर करिए. अगर अभी तक आपका जो वीकेंड है वो अच्छे से जा रहा है तो उसे और अच्छे से खत्म कीजिए. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Radio Olive 106.3 FM.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ऑलिव 106.3

0: FM.
1: Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3,

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.